ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाय सो पातशाह हो सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा होए न जाने तेरा किता केवड चीरा रहाओ सब सुरते मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुद बिन सिद्धि किने न पाईया कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सुवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिय दुख

आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकर आखन पाए, वड्डा ना होवे घाट ना जाए, ना कुह मरे ना होवे सोग, देदा रहे ना चूके भोग।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिवता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाणा।

सेवह जो सेवह तुध जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुध जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फांसी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

तू कर कर वेख है जान है सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला, तित सर्वरड़ै भई।

मिल साध संगत भज के वलना, सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जप तप संज

शरण परे की रखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबियो बाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रच्छा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो। आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। वो रच्छा निज कर दै करिये, सब बैरन को आसंगरिये। पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करे हो रच्छा। राख लिहो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाए प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा।

नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो, आदंतिक कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार किसी ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोहबद कियो, खट खट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते बदन सिर सब धार है आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न भावत वेदा। ताको कर

पात्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा।

नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर सेती रत्या दर गह पाई है ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वत दे जग में उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा रखे।

वाहिगुरु जी की फतेह। जैतसरी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहा जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बुझ है ताकि निर्मल रीत। वाहिगुरु जी का खालसा।

जिंदगी भी आस है, हर किसी नू किसी ना किसी दी आस है। जे मां नू पुत्र दी आस है, पुत्र नू भी मां दी आस है। एक दूजे दा आसरा बनया होया है। किसी नू कामयाबी दा आसरा है, आस रखी बैठा है, प्लानिंग बनाई जांदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने, भगत जी ने बड़ी भावना श्रद्धा प्रेमा विच अरदास कीती, मैनू तेरा ही आसरा है, कई जन्मां दा आसरा है। कह रविदास आस लग जी चिर पयो दर्शन दे। भगत रविदास जी ने पावन बाणी अंदर अपने कई जन्मां दी गल कीती, इहदा मतलब कई जन्म लगदे। कहंदे ने तेरे तो विछड़िया कई जन्म हो गए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, हुण इह जिहड़ा जीवन जन्म मिलिया है तेरे लेखे लाया है। जन्म एक वखरी चीज है, जीवन एक वखरी चीज है। असी जन्म नूं ही जीवन मन लिया है। कहंदे नहीं, जीवन जिन्हां दा महान बन जाए वह रब वर्गे हो जाए। जन्म ते पशु पंखियां ने भी लिया, परिवार बच्चे ते उन्होंने भी बनाए, निक्का छोटा जिहा घर परिवार उन्होंने भी बनाया। पर सतगुरु कह रहे ने साडी जिहड़ी पदवी है बहुत वड्डी है। अबर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। किते भगत रविदास जी कह रहे ने, हम सर दीन दयाल ना तुम, तेरे वर्गा दयालु नहीं, मेरे वर्गा सेवक नहीं। सच्चे पातशाह जी अगे तुसी असी भी ये भावना बनाई दाता, मनुखी जामे विच जे परमात्मा दी बंदगी ना बने, उहदा शुक्र ना बने। कहंदे ने फेर बंदा जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। बहुत सजाए पया देश लंबे, पता नहीं वारी आउणी कि नहीं। भावना नाल इक वारी तुसी भी गाओ, सतगुरु कारोबार भी चले पर हर श्वास तेरी याद विच बतीत होए, मेरी जीवन यात्रा सफली हो जाए। आसरा ते दुनिया ले फिर दिए, पर सानू तेरे चरणा दा आसरा बना।

पौड़ी अतुल क्यों तुलिय विण तुले पाया न जाय गुर कै शब्द विचारी गुण मह रह समाय अतुल क्यों तुलिय विण तुले पाया न जाय गुर कै शब्द विचारी है।

पाए, तिस की कीमत ना पवै, कहना किछु ना जाए। हौं बलिहारी गुर आपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुसै अमृत लुटीऐ, मन मुख बूझ न पाए, विण नावै नाल न चलसी, जासी जन्म गवाए। गुरमति जागे तिनी घर रखिया,

पाए। गुरमति जागे तिने घर रखिया, दूता का किछ न वसाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो शरदा प्यार भावना सहित गुरु दरबार दी हाजरी पर रहे हो। आप जिया ने बड़े प्यार दे नाल अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी तिना दे जत्थे पासों सरवन कीता है। उपरंत जो लड़ीवार गुरदेव जी दी पवित्र बाणी दी कथा चल रही है, मलार की वार उसकी अज अठवीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवन किया है। इस नाल संबंधित तीसरे पातशाह जी के दो श्लोक हैं जिन्हां दी विचार आपां पिछले दीवाना विच कर चुके हाँ। श्लोकां दा भाव तीसरे गुरदेव पिता महाराज ने उस वाहिगुरु की कीर्ति कि उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं प्राणी सेव आराध जिस दे वस सब कुछ है। दूसरे श्लोक का भाव सी कि उहदा नाम अमृत है, अमर करन वाला है। जो भी अमृत नाम नूं गुरु द्वारा प्राप्त करता है वह दुखां संकटां मौत दे भय तो मुक्त हो जाता है। अज गुरदेव पिता महाराज जी ने पौड़ी विच जो कृपा कीती है, क्योंकि कई वारी मनुख दे मन विच जदों परमात्मा दे मार्ग दा साधक बनता है, वह धर्म दे मार्ग ते तुरदा है, वाहिगुरु दी कीर्ति करदा है, वाहिगुरु दे प्यार विच तुरदा है, साधना करदा है, ते मन विच किते ऐसा ख्याल ऐसा वलवला आ जाए कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु दी गमता किवें प्राप्त होवे, उन्हूं पाया किवें जाए, उन्हूं जाणिया किवें जाए, तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी साधक दा इह भुलेखा दूर करदे ने कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो महान है, जो अतुल है, जो अमित है, जो अगोचर है, उसनूं मन बुद्धि दे वस विच कदी भी नहीं लिया जा सकता। वह साडी बुद्धि दे अगोचर नहीं, वह साडे ख्यालां दे अधीन नहीं। हां, वह गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की बख्शिश दे नाल उहदे प्रेम नूं माणिया जा सकता है, मत दे जोर नाल उहनूं जाणिया नहीं जा सकता। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਗਾਫਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया की पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही संतां दे जोग हो जो अमृत वेले सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी रहमत करन सभना जिया दियां हाजरियां दर प्रवान करदे होए इसे तरह अपने पावन चरण कमलां दे नाल जोड़ के इस जीवन नूं सफलियां कर देण। सतगुरु जी ने अज पावन तख्तां ते प्रकाश मन हो करके जो हुक्मनामे की दात बख्शिश कीती है वो राग सूही दे विच पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिया की पावन रसना तो उच्चारण किया हुआ है। ये पावन शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया के पावन अंग 763 और 764 के उत्ते सुभायमान है जी। सतगुरु जी रहमत करन इन्हां पावन हुक्मां अनुसार सानू जीवन जाच बख्श देन तां जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो जावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण सब तो पहला संपूर्ण श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ होणगे, उस तो उपरंत नितनेम दियां पंजां बाणियां दे पाठ होणगे। महाराज जी कृपा करन, शुद्ध बाणी एकाग्रता सहित पढ़न की दात बख्शिश कर देन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आदगुर ए नमै, जुगाद गुर ए नमै, सतगुर ए नमै, श्री गुरुदेव नमै। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरऊ जस विसुम्बर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, कीने राम नाम एको आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजी, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अबिनासी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग।
प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुन कार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमर ऐसे जन जिन कौ प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महा भयान दूत जम जम तल तय केवल नाम संग तेरा चल जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जप हो मन मेरे नानक पावह सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध न परै हर का नाम जपत निस तरै अनेक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिहे मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तय पार पराही अनेक बिघन जय आए सुंगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाइय साधकै संग जिह मारुग के गने जाय न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा पयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जह त्रिखा मन तुझा करख तह नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक कै नानक जन कै बिरत बिकै हर का नाम जन को मुकत जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहीं बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग के ते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड भागी पाईऐ संत की सेवा नाम प्याईऐ नाम तुल काश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य क्रिया अनक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्तनेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौखंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपी सरती वै अग्न माहे होमत प्राण कनक असव है वर भूम दान
निवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तौ पीहो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन सो अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टर जल धोवै बहु दे अनीत सुख कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत स्याण जम का पौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै शूट सुनाही ऊब पयाल मुहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को आपुना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एहो मैं छोरै जे को जानम मरण ते डरै साध जना की सरणी पर जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटय अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ धन तेरो नाउ निथावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल घटा कौ देवौ दान करण करावण हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपने गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ज्ञानिया सु प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस जीत राख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने कवन मूल ते कवन दृष्टा ने जिन तू साज सुवार सिगारया गर्भ अगन मैं जिने उभारया बार वगस्था तुझे प्यार दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया उपर साख सैन उप मुख्य प्याओ बैठ कौ देन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तव नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै सीतर जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ लेहु प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसरे मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए कर तब प्रीत पसम संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज सुमात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लिहो ऊड़ निभावै कह बुझ हरत बुझे डोरा निष्कहिय तो समझे पूरा कहा बिस्न पद गावै गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक कुमरी कृपा तरै संग सहाई सुवावे न चीत जो बैराई था स्यों प्रीत बलुआ की ग्रह पीतर बसै आनंद कील माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रहो याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास
तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात में तो तुम ही जाने नानक दा सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लागै आन सोआए नानक कहू नसी जाई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक पीना दे दस पी हर ले तौ मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से उनाही चारा ताको कीजे सदनम सुकारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब तोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी अमान कश बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिसकी वस्त तिसे आगै रखै प्रभ की आज्ञा मन माथै उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सहयो मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रहे उत है अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तान तान कुटंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असबस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रू मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरा मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरती साकत की आरजा साच बिना कह हुवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यों किरपन की नरारत दाम धन धन ते जन जिहे कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जनन हर प्रभु प्रबीन बाहर भेक न काहू पीन अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मानै आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लई लड़ लाए थन थनंतर रहया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंत्र तिसे त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कथ अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन है मुख ताको जस रसन बखाना जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती कर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझको न पहुचै मन सासा सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे हे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मान तेस सिमरत क्यों आलस कीजै जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मान तेस प्रभ काओ कबहू न बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साधत सहते आई तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै
जिह प्रसाद कर है पुन बवदान, मन आठ पहर कर दिसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सु प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नेकी जात, सु प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पातर है, गुरु प्रसाद नानक जा सका है। जिह प्रसाद सुनै करण नाद, जिह प्रसाद पेखै बिसमाद। जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चलै, जिह प्रसाद संपूर्ण फलै। जिह प्रसाद परम गत पावै, जिह प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहौ, गुरु प्रसाद नानक मन जागहौ। जिह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जिह प्रसाद तेरा प्रताप, री मन मूड तू ताको जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जिह प्रसाद तू पावै साच, री मन मेरे तू ता सिमराच। जिह प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जाप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बेगास। प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लागो तित लगै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुखता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग असथित मन पावै। साध कै संग माया ते पिहन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बडाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचरला है, साधु कै संग अजारसा है। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशुरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पाए आज्ञाकारी, साध संगत पही हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सुबिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राजरंक को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों बसदा कू खुद कू चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तहबत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बस है प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारै जो अंतर नाम सर्वमय पिखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपारस सगल निसतारै अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन मैं प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप ना पिखै नेत्र साधकी टहल संत संग हेत करन ना सुनै काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरप्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बाछ है केवल भगत कीर्तन संगराचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म मैं सोधय राम नाम सार रस पीवै सो पंडित कह उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जाने असथूल चहुर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर तारे पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाई है धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखया तुर कर्म
जिसका मन पार ब्रह्म का निवास हो, तिसका नाम सत राम दास हो, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास पर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी पर है, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तय नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख काटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रताए साई जुगत नानक वो पुरख कही है, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख है, तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ भावे सोई फुन होग, पसरे ओ आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार अष्टपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के श्रुते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहर, कई कोट कब काब विचार, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते निरह सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भर पूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बौजो नहीं फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कल थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिले प्रभ अविनाश, कई कोट मंगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हुए आप सो प्रसन्न, नानक पे जन सदा तहन तहन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो बिस्थार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु पांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर पै साध साध ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज सुमावै, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारण है, जल थल महियल सोए अष्टपति, करण करावण करणे जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै तां पात्र त्रावै, प्रभ पावै बिनु शास्ति राखै, प्रभ पावै तां हर गुण पाखै, प्रभ पावै तां पत तो उधारै, आप करै अपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै,
ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਹਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਹਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾਕਾ ਲੇਖਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਇਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਬਣਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਬੇਖਾਰੀ ਨਿਜ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੂਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜਿਉਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨ ਕੋਏ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਅਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨ ਕੋ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦਾਏ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਗੋ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟਿਆ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਤਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੁ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਹੁ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬੇ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉਠ ਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਟਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਬੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਬਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਕਾਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਆਪੁਨੇ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤੁਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੂਟ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਿਰਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤ ਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਤਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਠਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਧਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਹਪੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹੇਲਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ, ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਇਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੈ ਨਾ ਆਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਸਭ ਘਾਟ ਤਿਸ ਕਿਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤਾ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੂਰਜ ਨਉ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਘਾਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਕ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਕਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਕੁਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਬਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਿਹਿ ਜੀਓ, ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ,
ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੇ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਏਤ ਓਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਨੈ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਗ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਨ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੁਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਹੇ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਣੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਨ ਆਏ ਆਪ ਸਿਖੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਭ ਆਏ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੇ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸ ਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ਾ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਭੁਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਕੇ ਬਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਕ ਵਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਲ ਨਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕੇ ਛਤੇ ਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜਿਤੇ ਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਹੁਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈ ਰਾਖ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸਦੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋ ਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ

जाप अष्टपदी जब अकार एकाश ना दृष्टि ता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सूख कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर तीजा नानक करन हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हार अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो कित ठाए जब आपे हे आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपे ही परबीन तह वेदक तेव कहा कूचीन जब आपन आप उरतार है तौ सगन आप सगन कहा बिचार है जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जह अशाल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही परवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहो बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो पर पंच अकार तेहो गुण मैं कीनो बिस्थार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तव नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत परताप दोहू पाक क्या आपे तनी उनकी शोभा उनहू बनी आपे कौतक करै आनंद जोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिस आपन नाय लावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार जातिस पावै तां श्रेष्ठ उपाय अपने पहणै लै समाए
तुम ते भिन्न नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंतर सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखै तिस कोय न मारै, सो मुआ जिस मनहु बिसारै, तिस ताज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानौ साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने करतब जाने आप, अंतर जामी रहे ओ ब्याप, प्रतपालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर की गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया, जान लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इस ते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार, बंधन तोर पए निरवैर, आन दिन पूजह गुर के पैर, ए लोक सुखिये पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, साध संग मिल करहो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावहो, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर तहार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभाए खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाहे, तिस ते दूर कहां को जाए, उबरै राखण हार ते आए, निरपहो जपाए सगल पाओ मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटाए अहंकार, तिस जन कौ कोई न पौछन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोहो तिने हाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर पहै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया, श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समिगरी एकश कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाहे, नौनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्बलोक पूरन प्रतपाल, बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पणी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ,
वेद पुराण सिमरत मैं देख ससी अर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कबहू डोले सर्ब कलाकार खेल खेल मोल ना पाई गुण है अमोल सर्ब ज्योत मैं जाती ज्योत तार रहे ओ स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं इहो बिसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्ब व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनेक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जासो आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मध अलिप तो रहै जो किश कहना सो आपे कहै आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै तां लै समाए इस ते होए सो नाही बुरा उराय कहो पिने कश करा आप भला करतूत आतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच ताकि गत में तो कही ना जाए दूसर होए तां सो जी पाए किसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख स्वास स्वास सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करह साध संग अग्न सागर तरह हर धन के पार ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो तिने धान सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर ना होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नावनिद बुद्ध ज्ञान सर्वता है सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जान कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कूट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

ऐसा नाम निरंजन हुए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुह छोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए।

परवार साधारु मन्ने तरै तारी गुरसिख मन्ने नानक पवै न पिख ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंची पावह दर गह मान पंची सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जी को कह

तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावै कुवार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख

ना कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सुई क्यों करे आखा क्यों सलाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सबको आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे।

जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विख कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी।

मुंदा संतोख शरम पद चोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तै जग जीत आदेश तिशय आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग कुवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजहनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिशय आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग कुवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जीव तिस भावै तिव

आद नील नाद अनाहत जुग जुगे कुवेश आसन लो एलोय पंडार जो किछ पाया सो इकावा कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाहत

नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरन जोर जोर न राज मान मनसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिथी वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उतै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते काण महेश केते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे कू कहे पिछे पछताए तिथै घड़ी सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महमा बाहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कार कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जे हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार एहरन मत वेद हथियार पौख लागन तपताऊ भांडा पाऊ अमृत तित ढाल घड़ियै शब्द सच्ची टकसार जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक।

जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत।

भेग को कह न सकत के अचल मूरतन भव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गुनि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयाचन नमस्तुंग काले नमस्तुंग कृपाले नमस्तुंग रूपे नमस्तुंग अनूपे नमस्तुंग पेखे नमस्तुंग लेखे नमस्तुंग काये नमस्तुंग जाये नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग नामे नमस्तुंग टामे नमस्तुंग कर्मंग नमस्तुंग धर्मंग नमस्तुंग नामंग नमस्तुंग तामंग नमस्तुंग जीते नमस्तुंग पीते नमस्तुंग बाहे नमस्तुंग टाहे नमस्तुंग नीले नमस्तुंग नादे नमस्तुंग छेदे नमस्तुंग गादे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग उदारे नमस्तुंग पारे नमस्तुंग सुवेकय नमस्तुंग अनेकय नमस्तुंग भूते नमस्तुंग जूपे नमस्तुंग निर्कर्मे नमस्तुंग निर्परमे नमस्तुंग निर्देशे नमस्तुंग निर्पेशे नमस्तुंग निर्नामे नमस्तुंग निर्कामे नमस्तुंग निर्धाते नमस्तुंग निर्गाते नमस्तुंग निर्दूते नमस्तुंग भूते नमस्तुंग लोके नमस्तुंग सुके नमस्तुंग निर्तापे नमस्तुंग थापे नमस्तुंग त्रिमाने नमस्तुंग निदाने नमस्तुंग गाहे नमस्तुंग बाहे नमस्तुंग त्रिवर्गे नमस्तुंग सर्गे नमस्तुंग प्रभोगे नमस्तुंग सुजोगे नमस्तुंग रंगे नमस्तुंग पंगे नमस्तुंग गम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तुंग जलाश्रे नमस्तुंग निराश्रे नमस्तुंग जाते नमस्तुंग पाते नमस्तुंग मजबे नमस्तस्त जब्बे देशंग देशे नमस्तुंग पेशे नमस्तुंग निर्तामे नमस्तुंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व कूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व तापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले समस्तस्त देव नमस्तस्त देव नमस्तुंग पे वै नमस्तुंग जन मे नमस्तुंग सुबन मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्तुंग वर्णे नमस्तुंग मरणे नमस्तुंग जिरारंग नमस्तुंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सतबंदे नमस्तुंग निर्साके नमस्तुंग निर्वाके नमस्तुंग रहीमे नमस्तुंग करीमे नमस्तुंग अनंते नमस्तुंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तुंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व भोखंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छन त्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदेह है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है स्वर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अभीक है रभीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाते नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामी समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्धकर्ता अधो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता

परम परमेश्वरं क्लोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तोपराजी समस्तस्तुतामं तेरा जोरचा त्रिचंद जले हैं तले हैं पीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अभेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते आनंदी स्वरूपे नमो शर्माने समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो सासाजे नमो सासाये नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अकीजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारि सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छन्त्व प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्वान् त्रिमान् देव पेवादुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल यत्र विराजय रूप रिसाल नाम तामना जा जाक रूप रंग न रेखात पुरख उदार मूर्त अजौनाद अशेक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा दिशा हुए फैलो राग नाम काम बहीन पेखत ताम हुन जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदय मान तथा एक मूर्त नेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जाने के जेव तात मात न जा जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक माने पुरतीन लोक चौदह के विकह जग जापी जे जाप आद देवनाद मूर्त तप्य सब जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुर कपार सर्विश्वरच्यो स्वयं पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख भेष अंग राग न रंग या कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमेक अनुस्तुत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अभंग न तमेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वसात करना जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाथ आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अबा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड भाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दानी चतुर्चक्र जानी चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय जन्मंग जाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय प्रतिशय अधिशय दृश्य कृषय भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज पेशय के गंज कर्म के आज भरम के आज लोकै के आदित्य सुख के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है हे अशोक वर्ण है के सर्वा भरण है के जगतं कृति है के छत्रं क्षत्रिय के बर्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है
कि आदव देव है कि आप वपे वह कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रुजीर जा कह रही मैं रिहा के पाक बे है कि गै भूल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी देहांद है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र भावण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र भा हो कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र भान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमंग अहिम है कि अकल अलम है कि साहिब कलाम है कि हुस्न रजू है तमाम रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय कि रगहिम है हरीफुल अजीम है रजाय कि यकीन है निकल तरंग है अफीद है अपांग है आजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपरगंग त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभम सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुग स्वरूप है छिज है छूत है कि नरकंग प्रनाश है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद भंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाथ है जुगाद है जय है अभय है भूत है तूत है अनाश है उदास है तंद है बंद है अपगत है विरक्त

अजाद हैं, चरपट चंतव प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग दंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसाव चंतव प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरी कै मितो अम्बी कै सदैव प्रभा है जय जय है भगवती चंतव प्रसाद। कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है, हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है। कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है, कि कामिल करीम है कि राजक रहीम है, कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहिंद है, करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है, गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है, हरिफुल सिकन है हिरा सुलफिकन है, कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है, गंजुल गनीम है रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है, कि नरकंग प्रनाश है बहस्तुल निवास है, कि सर्वल गवन है कि सर्वल गवन है, हमें सुलरवान है तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है परम परमीश है, समस्तुल अदीश है अदीसुल अलीख है, हमें सुलपीक है, जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है, मद पार चंतु प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम, अरबर अगंज हर नर पर भंजु, अनगन प्रणाम मुनमन सलाम, हर नर अखंड वर नर अमंड, अनुपव अनास मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम, अंचि जंग असन अपंग, उपमा पार गदमित उदार, जल तल अमंड दिस्विस अपंड, जल तल महंत दिस्विस बेअंत, अनुभव नाश त्रेतर तुरास, आजान बाहु एक सुदाहु, ओंकार आद कथनीय नाद, खलखंड के आल गुर भर काल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंचिज गात अजिज न बात, अंचंज गात अनरंज बात, अनपुट भंडार अंडट अपारा, डीट कर्म अत डीट कर्म, अनब्रन अनंत दाता महंत, हर भूल मना चंतव प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है, कलखंडन है मैं मंडन है, जगतीश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तरण है जग के करने, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं कर सर्वं पर है, सर्वं कर है सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है करुणा कर है, विश्वम पर है सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है, कलखंडस है परते पर है, करुणा कर है जपा जप है तपा तप है, अकृता कृत्य अमृता अमृत अमृता अमृत है, करुणा कृत्य अकृता कृत्य धरणी त्रित है, अमितेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत्य अमृता अमृत है, जबा कृत्य अमृता अमृत है, निर्णायक है खलकायक है, विश्वंपर है कुरुणालय है, निपनायक है सर्पायक है, पापंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है, हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है, आत्म भस है जस की जस है, भुजंग प्रया चंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो वास वासे, नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी कामे कचरी छंद, अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाथ काश, अगंज अपंज अलख अपक काल दयाल अलेख अपेख, नाम काम गह अटा, अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रया चंद, नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे,
कुकर्मं परणासीसु धर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रं परणासी करिमूल कुनिंदा समस्तों निवासी अजाय विभूते गजाय गणि में हरियं करियं करिमूल रही में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुग।

सरस्वते एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूत पौन के गौन कुजात निवारे पारी बजान की भूप भली बिद न्यावत शीश न जात विचारे इते भय तू कहां पै भूप तंत को नांगी पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम निम अनेक वसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के भिख है पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुवासन माति मतंग मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पसैया तोर्त देश मलिंद मुवासन माति गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार तो बात नहीं चकचार लवैया सैब श्री सबको सिरनायक जा चिकनेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत भवेक भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे उन पर तापन बाढ़ जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे सास प्रसन्न फिर जग सतर सुवैव लोक छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निराधव जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाति गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म ही सर्विषण सचिव बतंत हुसे जम्फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रसह पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिर सास समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सुबैठ कैसे ही ऐसे सुबह बितायो साच कहो सुन ले हो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीश निवायो को बतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद

सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौकई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आ सुंदरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तुर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो भर चाहूं सो तुम थे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हु जो सदा हमारे पच्चा, श्री आस तुझ जू करे और अच्छा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो, पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की यो वेदराज, ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहि हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को बल मुबद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन की सुखी, एक एक की पीर पहचाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंबुवाद नील अनाद असंब, ताका मूड उचारत भेदा, जाकू जाकु भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विसजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव के पूपा, अंड जेर सेत जकीनी, उत्पुज खान बाहु रचात दीनी, कऊ फूल राजा हुए बैठा, कऊ सिमट पय शंकर कैठा, सिगरी सेठ दिखाए अचम पव, आद जुगाद स्वरूप सोयम पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठव चुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्तो सब सर नहीं परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न ऐ है, रचा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला, कृपा दृष्ट धन जाहे निहर हो, ताकि ताव तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छाह चव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुभारा, काल पास थीता है पुबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग कीर्त में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठौर मोहु सहाई, दुष्ट दुख तेले हो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किल सकल देख को हरता, दुष्ट दो किन को छह करता, श्री अस्तो जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांसत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल, सुने गुंग जो याह सुरस न पावई, सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह, हो जो या की एक बार, चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्र सहसपनी जय, अर सहस तीन कही जय, बहादुर सुदिष्टमी रवारा, तीस तद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया, पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कुआंक तरे नहीं आने,
राम रहीम पुराण कुरान ने कैम तेक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब भोपेद गया मेघ न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुय बकान्य दोहरा

जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु सिओ चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया इहो भी संसार तुम देख देवर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा विखा हर कह हर बिन अवर न कोई

रसमानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो। सच सुनै नो पठाए हार जीव गुपंद रखत वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखा।

पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूत क्यों कर रखी है सूतक पवर सोए, नानक सूत के बिना उतरे।

तुमरे गत मित तुम्ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस चिट्ठे शब्द सुजाय तेग बहादुर सिमरया करनौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह।

विसहदान प्रोसादान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चुक्कियां झंडे पंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मरणे वा मत उची मत पत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो नमाण्यो के माण नितान्यो के तां न्योटिया दियो सचे पिता वाहिगुरु तन तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे चरणा अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां ते प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता है अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए ने उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां अरंत साहब दे जप होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी की सेवा संभाल करदिआं होईयां बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तां बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नाम दान गुर सिक्खी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाई गुरबाणी दे जाप सरवण कर रही हैं जाप सरवण करदिया आप जी का धन्यवाद करदिया बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकतां पाउणिया श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ विच एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी आप जी दियां बख्शियां दातां विचों पवित्र कड़ा प्रसाद की देग हाजरे दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आपदा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे कृपा करो महाराज जी पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो अते चल रहे लड़ीवार सहज पाठ करन दी आग्या बख्शिश करो जी से गुरमुख प्यारे मिरणा जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा अग्या पही अकाल की तभी चलायो

ऊपर चरण तलय आकाश, कट में सिंध कियो प्रगास। ऐसा समर्थ हर जीव आप, निमक न बिसरे जी भगतन कै।

सगले साज करत जगदीशै, ठगन हार अनठगदा ठागै, बिन वखर फिर उठ लागै, संत सभा मिल

सदा हर की शरणाई, रब बिन नाही आन बिया रहाउ। पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इन मह किछु न संग लिया। बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्व जोन मह किरत पया। पुरब कमाणी छूटै नाही, जमदूत ग्रास्यु महाभया। बोलै झूठ कमावै अवरा, तृष्ण न बूझै बहुत हया। असाध रूप उपजया संत दुखन,

नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया। राम कली महल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहा। दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी धूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सुवारे सगले तन के। जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुर्बान।

गुर परमेश्वर सगल निवास, घट घट रव रहिया गुणतास, दर्श देहे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवां, घर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइय, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मह हुए निवास, संत संगत मह हुए उदार, नानक भवजल।

रहाउ। एक अराधु साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हुआ आप। राग राम कली महल्ला पंजवां पड़ताल।

नर नर है नमस्कारं जलन थलन वसुद गगन एक एक कारण रहाओ हरण तरन पुन पुनः करन नह गिरह निरंहारं गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं करन केल गुण अमूल नानक बलिहारं राम कली महल्ला पंजवां रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया चले कनिक कामनी रहाओ भंडार दर्ब अर्ब खर्ब पेख लीला मन सुधारै नै संग गामनी सुत कलत्र।

रहाओ। बडभागी ते जन कौ जानहो, जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए कै पुन बैकुंठ सिधावे। अजामल कौ अंत काल में है नारायण सुदयाई, जां गत को जोगी सर बाचत सो गत चिन्ह मह पाई। नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या, धर्म कौन गज कीना, नानक बिरद।

जाते दुर्मत सगल विनाशै, राम भगत मन भीजै रहाओ। मन माया में उर्ज रहे है, बूझ है ना है कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरै, पावे पद निर्वाना। भय दयाल कृपाल संत जन, तब यह बात बताई। सर्व धर्म मानो तेह किए, जे प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निस्बासुर मह, निमख एक उर धारै। जम को त्रास मिटै नानक, तेह अपनो जन्म सुवारै। राम कली महला नौवा, प्राणी नारायण सुदले। छिन छिन औद कटै निस्बासुर।

रहाउ। काल कलवाली सरान बेड़ी काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया। पतविन पूजा सतविन संजम जतविन काहे जनेऊ, नावह तो वह तिलक चढ़ावहो सोचविन सोच ना।

मिले सही। राम कली महला पहला, जग पर बुद्ध मड़ी बंधावह, आसन त्याग काहे सच पावह, ममता मोह कामन हितकारी,

ताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिखिया सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करह पाखंड, माया मोह सह जम डंड, फूटै खापर भीख न पाए, बंधन बाध्या आवे जाए, बिंद न राख जति कहावै, माई मागत त्रै लुभावै, निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

बहुजारी, विण कर्मा कैसे उतर सुपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जिहवा इंद्री साध लुभाना, पशु भये नहीं मिटे निशाना।

राम भगत जम का बहु पागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल राम निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा मह रह निरारे, तस्कर पंच शब्द संगारे, पर घर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहूं समाए, गुरमुख जाग रहे अवधुता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, अनहद शब्द वजै दिन राती, अविगत की गत गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहया निर्बानी।

चाड़ सुपवन सिंहासन पीजै, न्यौली कर्म खट कर्म करी जय, राम नाम बिन बिरथा सास ली जय, अंतर पंच अग्न क्यों

वै सचनाऊ, तुम शरणागत रहूं सुभाऊ, तुम ते उपजियो भगति पाऊ। जप जापौ गुरमुख हर नाव, औ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ न पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं घर बार। नानक

रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर मैं काष्ट भया, पुन दान इसनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया, लालच लागै नाम विसारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जम धाई केस गह मारै, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिभवन ज्योत दिखाई सच्चे तख्त सच महली बैठे निर्भाओ ताड़ी लाई।

सो जोगी कहिए। एक स्यों चित लाए सहसा टूटे निर्मल हुए, जोग जुगत इव पाए।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत वड्डा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना है। असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आपां गाण वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिर होर भर के बहुत ही सत्कारयोग गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा जी, वह भी पहुंच चुके हैं दासियों के बाद, उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।